पितर गोपत कैस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही अचरजा, नानक अपन रूप आप ही परजा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कव मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीसा, तह छल छिद्र लगत कहो कीसा। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै भूख कमन तृपतावै। करन करावन करना हार, नानक करते का नाहि सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई। जह सर्ब कला पह प्रवीण, तह वेद देव कह को चीन। जब अपने आप उर तारा, तो सगन अपसगन कह बिचारा। जह अपन ऊच अपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही अचेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जन हो आप। जह शल छेद भेद समाया, ऊहा किसा व्यापत माया। आपस को आप है आदेश, तेह गुण का नाही प्रवेश। जह एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागै चिंता। जह अपने आप पति यारा, तह कौन कथा कौन सुनना हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आप सको आप है पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच कार, तेहो गुण मह कीनो विस्थार। पाप पुन तह पई कहावत, को नरक पो सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, हूं मैं मोह परम पै भार। दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखा, खेल संकोच तो नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप, जह पसरा पासार संत प्रताप। दुहु पाख पतनी, उनकी शोभा उनहु बनी। आप है कौतक कराया अनद चोज, आप है रस भोगन निर्जोग। जिस भावै तिस आपन नाय लावै, जिस भावै तिस खेल खेल

श्लोका जीय जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथा आप सुनना हार आप है एक आप विस्तार जात इस भावै ता श्रेष्ठ उपाए अपना भण लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए अपन सूत सब जगत परोए जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए सतनाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबता का हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख तिस कोई न मारा सो मुआ जिस मन हो बिसारा तिस तबर कहा को जाए सब सिरे निरंजन।

दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसा सोहत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पहे मरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर बिनास हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक सुकट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देख्या जिस आप देखाए नानक तिस जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंता कट कट व्याप रहया भगवंता तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिशे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरित मह देखा शशि अर सूर नखियत्र मह एक बाणी प्रभ की सब को बोला आप डोल न कबहू डोला सर्ब कला कर खेला खेला मोल न पाईया गुण है मोला सर्ब ज्योत मह जाकी ज्योता तार हे स्वामी ओत पोता गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मह एहो बिसास संत जना का पेखन सब ब्रह्मा संत जना कै हृदय सब धर्मा संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस की एह रहता सत बचन साधु सब कहता जो जो होए सोई सुख माना करन करावन हार प्रभ जाना अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कमन निकट कमन कही है दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जिन जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आप पेखन हारा सगल समगरी जा का तना आपन जा सो आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सबका मद लिप्त हो रहा है जो कुछ कहना सो आपे का है आग्या आवै आग्या जाए नानक जा पावै ता लै समाए इसते होए सुनाहि बुरा उरा कहो किनै कछ करा आप भला करतूत आत नीकी आपे जानै अपने जी की आप साच धारी सब साच उत्पोत अपन संगराच ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सोजी पाए इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक एहो जान जो जाना तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओहो तनवंता कुलवंता पतेवंता जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंता धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का है सुआओ जन का संग चित आवै नाओ आप मुकत मुकत करा संसार नानक तिस जन का उस

उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरहो गोविंद मन अंतर की उतरा चिंद आस नित त्याग हो त्रंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती कर हो साध संग अगन सागर तरहो।

सुख मनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसा सो होत निदान सर्वे इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहर न होवे आमन जान हर तन खट चला जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तमे स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सबके मद सगल ते उदा सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरित शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसा सुन

0: शुक्र भया जस कामन होई तू करता करना मैं नहीं जा हुकम न होई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाए लखिया रहाओ
1: जात में है जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहे तू सच्चा साहिब सिद्ध सवाले

न रहाओ सच नाम की तिल वड्याई अख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिल कै आखन पाहे वड्डा न हो वै घट न जाए ना ओह मरै ना हो वै सोग देंदा रह ना चुकै भोग

कर्म को आदि संगरिय पूर्ण होय हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अब न त्याऊं जो बरचा हो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सतर हमारे मारिया है आप हाद मुझे बरिया मरण काल का त्रास न भरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज करे हो रक्षा राख ले हो।

कोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पाल मो बत कियो कट कट के अंतर की जानत परे बुरे की पीर पछानत जीती ते कुंचरिया स्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जबुद कर कर करतारा प्रजा तरतब देह पारा जब या कर करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह धर सब हो जेते बदन श्रेष्ठ सब तर आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंबो आद अनिल अनाद असंभो ताका मूढ़ उचारन भेदा जाको भेव न पावद भेदा ताको कर पाहन अनुमान तो महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध जीती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजाओ प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहि भूपा अंडज जेरज से तज कीनी ओत भुज खान बाहर रच दीनी कहु फूल राजा हव बैठा कहु सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप संयंभव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे

चौपाई संबत सत्रह सहस पण जाए अर्ध सहस फुन तीन कह जाए भाद्रव सुधी अष्टमी रवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखिया नई त्रे चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापतो मस्त शुभ मस्त आफ जून दोहरा दस जान कर दस पर तीजा कृपा अपार आप हाथ दा राख मोहे मन क्रम वचन विचार चौपाई मैं ना ग्रेसा है प्रथ मनाऊ किशन बिशन कबू मैं त्याऊ कान सुन पहचान तिन सौ लिव लागी मोरी पग इन सौ

जो निज प्रभु सो कहा सो कहो हो जग माहे जो ते प्रभु को त्याए है अंत स्वरूप को जाहि दोहरा हर हर जन दोई एक है बेब विचार कछ नाहे जल ते उपज रंग जो जल ही बिकस माए दोहरा जब आए सुप्रभु को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कह तो सुनाए कबा चो दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करो सुहाए दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याए है संत अंत लहंग मुक्त फल पावहंग भगवंत दोहरा कालपुर की देह मो कोटक विष्णु महेशो कोटिंद्र ब्रह्मा किते राम सच करोड़ जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाकत ने तो सुर्ग बास रग भर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुना यार गावे दुख पाप ते निकावे बिशन भगत की ये फल होई आदमे आछब सक न कोई सम्मत 1755 हार्ड वदी प्रथम सुख दावन का प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लह लो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर तद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रंगमर कथा प्रसंग साध साध जानो नहीं बात बाद में बाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया

सचे साहिबा क्या नाही करते रहे करता तेरा ए सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सत सलाह तेरी ना मन मसावे नाम जिनका मन मसिया वाजे शब्द कनेरे कहना।

नित नित रख और धारो तम संसार चरण लग तरी सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

कपूता संतोख था प्रख्या जिन सूता जे को बुझा होवै सचियार तबलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तलै कमन जोर जी जा तिरंगा के नाव सबना लिखिया उड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाना कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूता कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया न जा बाए कवार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ संख पूजा संख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कमन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल पख खाहे असंख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचार वारिया न जावै एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है।

अंगत नित पार गुणगन उदार मन गन प्रणाम निरपय निकाम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड लिसह कर्मा दृश्य धर्म सर्वा प्रणाडा दंड बाढ़ चाचरी छंद प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियं करियं निरनामे अकामे पोजंग पर्यात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या चाचरी छंद न सत्रा न मित्रा न परमंग न पित्रा न कर्मंग न काय जन्मंग अजाय न चित्रा न मित्रा परे है पवित्र पृथ्वी स दिश दृश कृष भगवती छंद त्व प्रसाद कथते किया छिज देसा किया भिज पेसा किया गंज कर्मा किया पंज भरमा किया भिज लोका किया दित सोका के वधूत बरना के विभूत करना के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है किया शोक बरना के सर्वा भरना के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप के अनुभव अनूप के आद देव है के आप भेव है के चित्रंग बिहीना के कैदीना के रोजी रजा कर ही मै रिहाका के पाक बेअब है के गैब बुल गैब हैं के अफबोल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र दान्या के सर्वत्र गौना के सर्वत्र पौना के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पे

सूरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सोबात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाच कनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंदन साचर पू

मारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय, हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, सारे संत सहाय प्यारे, दीन बंदुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतारा, काल पाए शिव जू अवतारा, काल पाए कर्बिसन प्रकाशा,

ऐ कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया।

सुमनाहा जिन कर्ता करना किया चिंता पे करणीताहा सुकर्ता चिंता करे जिन पाया जग इस जुहाई।

नानक देह कर हथ परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावरी जो विशेष गुरमत दीवान सजदे हन इस गुरमत दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है। सतगुरां दी अमृत गुरबाणी दा कीर्तन सन्मान योग भाई वरियाम सिंह जी और उन्हां दे नाल सतगुरां दी सिवद करन वाले कीर्तनीय गुरसिख आप जी नूं सरवण करा रहे सन। संगत जी भाई साहब ने एक तां भट्ट जालप जी का सवैया सरवण कराया

आप जी ने सरवण किया है इस शब्द को आधार बना के आप संगत नाल गुरमत विचारां दी सांझ पा सकां। गुरु बख्शी फतेह अदब सहित सारे बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहला जो सवैया भाई साहब जी ने गायन किया उस विच धन गुरु अमरदास जी दे दर्शन करन दे नाल किन्नियां कु रहमतां मिलदियां ने। जालपा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठे मिले। गुरु हरकृष्ण साहब दा आगमन पुरब सी ते असी सारे ये तुक दे अर्थ कर रहे सां कि श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। मैं जो भाई साहब ने गाया सिर्फ उस दी विचार ही करके जानी है। ते ये जरा पवित्र बचन सी पढ़ने श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है सब दुख जाए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे पवित्र बोल ने ते रोजाना इस पौड़ी तो असी अरदास दी आरंभता करने। याद रखियो जिहड़ी असी अरदास करने खां उस विच जेड़ा सुखमनी साहब जी दा पदा संगती रूप च पढ़िया जांदा है ओ अरदास नूं असी कहिंदे आ वत्स भाव। मैं परसों कथा करदिया क्या सी वत्स दा अर्थ है बच्चा। असी अपनी अरदास ना तां सियाणे बन के ना विद्वान बन के ना बहुत ज्यादा कोई होर पदवी लैके असी अरदास इत्थों शुरू करने आ। तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी सब तो पहला तो समर्पण है जी अरदास विच। तुसी मालक हो ते तुहाडे कोल असी बेनती करना आए हाँ। ते अगले तीन शब्द ने जियो पिंड ते एक रास है आ जिहड़ी मेरे शरीर विच जियो करके मैं तुरना पिया ये जिंद भी तेरी है। ते पिंड दा अर्थ शरीर आ जिंद दे सहारे जिहड़ा पिंड चल रहा है ये भी तेरा है। ते जो कुछ तुसी मैनू पूंजी बख्शी ना ये भी तेरी है। इहदा मतलब अरदास भेटा कह लो कि तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। अगला बचन है तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुसी साडे माता पिता हो असी तुहाडे बच्चे हाँ। ते फिर अगे फिर शुकराना कर दिता ओ शुकराना है तुमरी किरपा मैं सूख कनेरे। फिर बेनती सुनियो पहला समर्पण है जियो पिंड सब तेरी रास। फिर शुकराना है ओ शुकराना एक है कि जिन्ने मेरे को सुख ने एदे विच मेरा अपना कोई योगदान नहीं ये सारे सुख तेरी किरपा करके। जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी किरपा मैं सूख नेरे। मैं जदों ये अरदास पढ़ने हैं कि श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है सब दुख जाए। अर्थ सिद्धे ने कि जेड़ा सतगुरु गुरु हर कृष्ण साहब नूं ध्याएगा ते जेड़ा सतगुरु गुरु हर कृष्ण साहब दे दीदार करदा है उहदे सारे दुख कटे जांदे आ। ते संगत जी अज भी वापरदा है ये आम शब्द नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे बोल कि श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है सब दुख जाए। पर मेरे मन च बड़ी वारी आउणा कि गुरु हर कृष्ण साहब दे डिठियां दुख जांदे आ कोई शक नहीं। पर जदों गुरु साहिबान दी बाणी विचों दर्शन कीते सच ए वे कि सतगुरु गुरु नानक साहब दे बचन भी गुरु अंगद साहब बारे गुरु रामदास बारे गुरु अमरदास सतगुरां बारे देखण नाल फिर बेनती एक पाठ तुसी कर दिओ मैं मूर्ख की केतक ये भी डिठे वे ना। मैं मूर्ख की केतक बात कह कोट परादी तरिया रे गुर नानक जिन सुनिया

हर नजरो तू मन मेरे दुख सब विसार ना अंगीकारो करे तेरा कार सब सुवरना सबना गिला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारी कह नानक मन मेरे सदर हो हर नाले साचे सहिवा क्या नाही घर तेरा घर दा तेरा सब कुछ है जिस दी सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जन का मन वस्या वाजे शब्द कनेरी कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच राम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया।

मेरे पास वाहेगुरु जी का खालसा आज्ञा पही अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ